इस पंक्ति ने प्रिंसिपल गंगा सिंह की याद करा दी मैं हल्द्वानी दे सन 61 दे इकट्ठे से मैं सवेरे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी संस्कृति श्लोकों की कथा करता से वह शाम को खुला लैक्चर देन ते असी इकट्ठे सैर करन जाया करी ते मैं एक दिन कह दिता मैं कि स्टेज की गल प्रिंसिपल साहब एक पासे रहन दो जो मैं कथा करदा उन्हों भी एक पासे रहन दो जो तुसीं लैक्चर दें दो उसनों भी एक पासे रखो आपसी मन की गल करिए थोड़ा मन कित्थे खड़ा ते मैं कि इस तरह का प्रश्न तुसीं फिर मेरे ते करना ते असी आप ही कथावाचक ते स्रोते बनिए ते सैर साड़ी सफल हो जाए मेरे पल्ले कुछ पै जाए तुसी कुछ सुनना चाहोगे तो मैं सुना देंगा पर मैं सुनना चाहना थोड़ा मन कित्थे है मैं हमेशा उन्होंने हसदया हुआ वेख्या से अखा भर आई ना उन्होंने रो पै तो मैं कहने लगे मतकेन जी तो सैर का स्वाद ही अज गवा चुके नदी तो पार जाना सी घूम के आना सी सैर करने की मेरी आदत है पर मेरा मन बोझल कर दिता है मैं कि जवाब तो तुसी दिता ही नहीं मैं क्योंकि मैं तो यही पूछा ना थोड़ा मन कित्थे खड़ा है तो जवाब तुसी दिता नहीं तो मन थोड़ा बोझल हो गया कोई जवाब देंगे तो थोड़ा मन बोझल आता तो मैं मनता पर तुसी आख्या तो कुछ भी नहीं और मैं देखा कि हंजुआ की रवानी पहले नालों ज्यादा वध गई मैं कह लगे ज्ञानी जी मैं एक किसी वक्त रुबाई लिखी सी वह थानू सुना देना होर कुछ कहन की मेरे को समर्था नहीं है और मैं नहीं कुछ कह सकता वह रुबाई मैं उदो नोट कर ली सी बाद दिच काफी जेडे पंजाबी मैगजीन ने उन्होंने रुबाई छपी रुबाई सी ये दिल सागर सागर दे वांगर सी अत डूंघा अड़िया ज्ञान विचार सिदक दे मोती पादा ताने खड़िया पर ए बाण कुछ अजी मेरी बाहर बोल लुटाया जप तप दी खट्टी ना खट्टी खाली पिर दर खड़े जो कुछ मेरे कोल सी मैं बोल बोल के लुटाया मैं बहुत बोलिया सवेरे बोलिया दोपहर में बोलिया शामी बोलिया बोलदा ही गया पर ए बाण कुछ अजी मेरी बाहर बोल लुटाया जप तप दी खट्टी ना खट्टी खाली पिर दर खड़िया घंटिया बदी जड़ा बोली जाए महफिलों कितने महफिल रचा के बोली जाए समलना छूछे ने कुछ भी कोई नहीं कहो कबीर छूचा घट बोले भरिया होए सो कभू ना डोले कुछ भी कोई नहीं सब खाली हो गए बिल्कुल खाली हो गए तो मैं अर्ज कर रही असी जबान में असी ब्रेक ला सकते हैं बोल रही है चुप अखा खुलिया ने बंद कर सकते हैं कन्ना नूं अंदरों बंद करन दी समर्था रब ने नहीं दित्ती असी हुण चाहिए अंदरों कन्न बंद कर लईए नहीं कर सकते इस तरह का कोई आला रब ने नहीं बनाया लेकिन अख बंद करके चल सकते पर चूंकि अख बंद करके चल सकते हैं तो अख बंद करन दी समर्था रब ने ही दित्ती है कि अख खोल के चल सकते हैं इस तरह की युक्ति भी उसने दित्ती है इस स्टेज पर पहुंच के भगतां ने कह दिता साडा कुछ भी नहीं सब कुछ तेरा जे अख अखां खोल के मंजिले मकसूद ते पहुंच गए ते तेरा धन्यवाद है क्योंकि अखां खोल के चलन दी तू समर्था दित्ती ते असी अखां बंद करके चले ते ठोकरां खा गए जख्मी हो गए रब तेरा कसूर नहीं साडा ही दोष मुझ अवगुण सह ना ही दोष ये तेरा दोष नहीं तेरा कसूर नहीं इस स्टेज ते पहुंच के भगतां ने कह दिता सब कुछ तेरे हाथ ते इतना बोध है कोई नहीं ते जना खड़ा कह दिंदा हूं जदों रब जपावेगा उदों नाम जपांगे ते अजे रब यही चाहता है कि सारा दिन झूठ ही बोलता रहे जदों रब चाहेगा जदों गुरु चाहेगा उदों अमृत छकांगे ते अजे गुरु यही चाहता है बस पब दे बोतल खोल खोल के पी जा तू नशे दे खरमस्त हो ही जा अजे गुरु यही चाहता है नहीं गुरु ते ऐसा नहीं चाहता लेकिन तेनों खुल भी दे देती है पर चूंकि खुल उसने ही दिती है इस वास्ते भगतां ने कह दिता सब कुछ तेरे हाथ खुल तेरी दिती खुल साड़ी नहीं यह गल वखरी है कि हुण असीं अगे जाना है या पिछे जाना है क्योंकि खुल साड़े कोल है और तेरी दिती हुई है गल इतनी स्पष्ट है।

सो दोस्तों हम शुरू कर दिया एंटरटेनमेंट सेगमेंट बैक टू बैक सॉन्ग्स तुसी सुनोगे पंजाबी सो रिक्वेस्ट भी जल्दी साडी वेबसाइट पे जा सकते हो www.2mifm.org.au ते उत्थे जाके रिक्वेस्ट वाला बटन प्रेस करके जो भी पंजाबी सॉन्ग सुनना चाहते सानू रिक्वेस्ट भेज सकते हो ते शुरू कर दिया ये एंटरटेनमेंट सैगमेंट पहला सोंग बरोटा ये सिद्धू मूसेवाले का सोंग ते दूजा सोंग अगला जन्म रणजीत बावे का सो बैक टू बैक सोंग्स जिदा जिदा रिक्वेस्ट आऊगी आप सोंग प्ले करांगे सो इंजॉय करो ये एंटरटेनमेंट सैगमेंट पहला सोंग बरोटा